0: जो जैसे अभी आपने जो आर्गुमेंट दिए हैं ये इनकी बहुत, चलिए इस पर हम बाद में बात करें। अगर हम थोड़ा
1: सा कहा, लेकिन आपको ये भी तो मालूम है ना कि एक खास अदारा जो है वो हमारी इन छोटी छोटी तहरीरों पर बड़ी गहरी निगाह रखता है।
0: जी जी ठीक है। अच्छा, अभी आपने थोड़ी सी बात की थी डेनमार्क की, अभी जो हुकूमत अभी तक नहीं बनी, अगर हम उस पर थोड़ी सी बात कर लें, वो ये है कि मेथे फेडरिकसन जो हैं अब वो तो उनकी बजाय वेंस्ट्रा के जो चेयरमैन हैं थ्रोल्स लुंड जो हैं वो अब कोशिश कर रहे हैं, उन्होंने 7 पार्टियों को दावत दे के उनके साथ बातचीत शुरू की है, और वो मेथे फेडरिकसन को ये थोड़ा सा डर लग रहा है कि ऐसा ना हो कि वो हुकूमत ना बना सकें और राइट विंग की हुकूमत जो है वो यहाँ पे बन जाए। तो उन्होंने उनको कहा है कि मैं बहुत खुश हूँ कि आप ये भी कोशिश कर रहे हैं और मेरी आपके लिए बहुत जो है नेक तमन्नाएं हैं। हाँ, कहें भी क्या, बिल्कुल
1: वो हुकूमत शादी में जिस तरह से नाकाम रही है उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 2-3 सियासी पार्टियां जो हैं वो अपने मौके से इधर उधर होने को बिल्कुल तैयार नहीं थी इनके साथ बातचीत करते हुए, और उसमें इन्हीं के वजीर खारजा जो है कायम मुकाम वजीर खारजा है या जिन्हें यूथ लेने के लिए हम कह सकते हैं कि दंग टपाऊ वजीर खारजा है लास्ट के राश मोशन,
0: जी जी बिल्कुल,
1: उनका जो रवैया है वो बड़ा सख्त और जारहाना है जी। और बाज तो ये भी कह रहे थे और अभी भी कहा जाता है कि वो अपने लिए आने वाली हुकूमत में कोई बहुत बड़ा ओहदा चाहते हैं, और ऐन मुमकिन था कि उनसे ये मंसूब किया गया कि शायद वो खुद वजीर आजम के लिए ओहदे के लिए भी मुतमन्नी है, लेकिन वो इजहार नहीं कर रहे। ये तो खैर वो चलती बातें हैं जो डैनिश मीडिया में सामने आती हैं, लेकिन हकीकत यह है कि इस वक्त मेथे फेडरिकसन की जो नाकामी है उसने कंजर्वेटिव पार्टी के रहनुमा को जिस तरह से मौका मुहैया किया है नई हुकूमत बनाने का, और जिस तरीके से वो फिर वक्त है पार्टियों को मदऊ कर रहे हैं, एक दो पार्टियों को उन्होंने बुलाया भी है और उन्होंने अच्छे इम्कान का इजहार भी किया है, लेकिन साथ ही एक मसला जो है वो ये है कि दाएं बाजू को तो वो बुला रहे हैं और उनकी तारीफ भी कर रहे हैं और इम्कान भी जाहिर कर रहे हैं कि शायद अब के दाएं बाजू की हुकूमत हो, लेकिन मुजाकरात के दौरान अब तक बाएं बाजू की पार्टियों को खासतौर पर एचएफ को ये कोई खास अहमियत नहीं दी जाए।
0: जी बिल्कुल,
1: और ये बात जो है ये साबित करती है कि दानिश्ता तौर पर कोशिश यही की जा रही है कि दाएं बाजू की हुकूमत कायम हो, लेकिन दाएं बाजू की हुकूमत में अगर आप गेंच फोल्क पार्टी को जो कि हम चाहते वतन और खासतौर पर हम मुसलमानों के बड़ी खिलाफ है उसको नजरअंदाज कर दिया जाता है तो ये एक पार्लियामानी सियासत का या पार्लियामानी सियासी कुव्वत का बनने वाली हुकूमत के लिए बहुत सख्त खतरा हो सकती है।
0: और उसके साथ साथ लेकिन डेनिश पीपल पार्टी ने कहा है कि अगर हम ऐसी कोई हुकूमत को सपोर्ट नहीं करेंगे जो कि जिसमें लास लुके होगा, तो और लास लुके वो जो है डेनिश पीपल पार्टी के साथ उन्होंने हमेशा कहा कि मैं उनके साथ काम नहीं कर सकता, हालांकि उन्होंने 2001 में जो हुकूमत बनी थी जिसमें उनकी पार्टी ने हुकूमत बनाई थी उसमें तो डेनिश पीपल पार्टी ने बाहर रह के बहुत ही अपना असर रसूख जो इस्तेमाल किया था, तो क्या ऐसे नहीं हो सकता कि डेनिश पीपल पार्टी बाहर रह के सपोर्ट तो करे लेकिन हुकूमत में शामिल ना हो, लेकिन वही अपनी जो है बातें मनवाती रहे, जैसे अभी उन्होंने 13 पॉइंट्स का जो है वो
1: बिल्कुल आपने बिल्कुल मिजाज से जिया किया और यही बात मैं आज कर रहा था।
0: जी जी,
1: डेनिश पीपल्स पार्टी जो है अभी कल शाम की बात है उनके रहनुमा ने ये साफ कह दिया है कि हम किसी को भी इस शर्त पर पार्लियामानी सियासी हमारत मुहैया करने को तैयार हैं कि हमारे इंतखाबी वादे जो थे जो कि एक 13 रुकनी मंसूर की सूरत में हमने पेश किए हुए हैं उनको तस्लीम किया जाए, और ये डैनिश पीपल्स पार्टी का मौकफ है कि हमने जो अपने राय इंतजाम से अपने अमाचियों से वादे किए थे इंतखाब के दौरान हम दूसरी पार्टियों की तरह उनसे मुनहरफ कभी नहीं होंगे, और ये कभी जो है ये बहुत सख्त है जी। और इसी तरह राष्ट्रों के राष्ट्रमोशन का ये कहना जो था कि वो किसी